माणिक वर्मा के स्वर में अभी आपने सुनी निळोबा राय की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अब सुनाते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे राम फाटक के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वामी स्वरूपानंद की रचना शंकर घाणेकर के स्वर में।

श्रोताओं, अमृता गोखले के स्वर में आप सुन रहे थे वसंत बापट की रचना। कार्यक्रम में अब सुना रहे हैं नामदेव महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है दीपक पाटेकर ने।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दीपक पाटेकर ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आपने श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र का निर्माण था। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लीजिए पेश है राग रामकेली पर ख्याल गायन. कलाकार हैं मधुमिता चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत रहे हैं समीर आचार्य और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग रामकेली पर ख्याल गायन. कलाकार हैं मधुमिता चट्टोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on TTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Ramkeli. Our artist is Madhumita Chattopadhyay. Accompanying her on the tabla is Samir Acharya and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to khayal in the rag Ramkeli. Our artist, Madhumita Chattopadhyay.

0: अभी आप राग रामकेली पर ख्याल गहन सुन रहे थे। कलाकार थी मधुमिता चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर आचार्य और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाक्षा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग बैरागी पर वायलिन वादन। कलाकार हैं अभिषेक सिन्हा। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बैरागी पर वायलिन वादन। कलाकार हैं अभिषेक सिन्हा।
1: You were listening to a khayal in the rag Ramkeli. Our artist was Madhumita Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Samir Acharya and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a violin recital. Listen to a violin recital in the rag Bairagi. Our artist is Abhishek Sinha. Listen now to the violin in the rag Bairagi. Our artist, Abhishek Sinha.

0: अभी आप राग बैरागी पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अभिषेक सिन्हा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You're listening to a violin recital in the Raag Bairagi. Our artist was Abhishek Sinha. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम, 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है. सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत. इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सितार वादन से. कलाकार है विजय कुमार संत. विजय कुमार संत सितार पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग गौड़ सारंग, आलाप जोड़ और उसके बाद विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में. आपके साथ तबले पर है विकास पुरंदरे. सुनते हैं सितार पर राग गौड़ सारंग, कलाकार विजय कुमार संत.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे सितार वादन में राग गौर सारंग, कलाकार थे विजय कुमार संत, आपके साथ तबले पर थे विकास पुरंदरे। आइए इसके बाद हम सुनते हैं विजय कुमार संत की सितार पर बजाई हुई पीलू धुन, तबले पर है विकास पुरंदरे।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे विजय कुमार संत की सितार पर बजाई हुई पीलू धुन। तबले पर थे विकास पुरंदरे। मिश्रवाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं सरोद वादन, कलाकार शेखर बोरकर। शेखर बोरकर सरोद पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग भीमपलास। आलाप जोड़ झाला, मध्यलय गत तथा द्रुतलय गत झपताल में। आपके साथ तबले पर है विकास पुरंदरे। सुनते हैं शेखर बोरकर का सरोद वादन, राग भीमपलास।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे सरोद वादन में राग भीमपलास, कलाकार थे शेखर बोरकर, आपके साथ तबले पर थे विकास पुरंदरे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत, हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classic Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग मालकौंस. विलंबित और द्रुतगत ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है गुलाम सरवर ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सारंगी रिसाइटल बाय कमाल सरवर साबरी. ही बिगिंस हिज रिसाइटल विद राग मालकौंस. द विलंबित एंड द्रुतगत आर सेट टू तीन ताल. कमाल सरवर साबरी हैज बीन अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर.

0: कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग रागेश्री मध्य लयगत झपताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आतंगति की है गुलाम सरवर ने।
1: नाउ लिसन टू राग रागेश्री परफॉर्म बाय कमाल सरवर साबरी। द मध्य लय गत इज सेट टू झपताल एंड द द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल, अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर।

0: अभी आप कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग रागेश्री सुन रहे थे। तबले पर आपकी प्रतिकी थी गुलाम सरवर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू राग रागेश्री ऑन द सारंगी बाय कमाल सरवर साबरी। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है पूर्णिमा धुमाड़े। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मारुबिहाग, सुनते हैं विलंबित गत रूपक ताल में बद्ध है, बोल है परी मोरी नाव, और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है, बोल है नैना लगाए मैंने। साथ संगत तबला धोमोड़क, हारमोनियम सुयोग कुंडलकर। तो आइए सुनते हैं राग मारुबिहाग, कलाकार पूर्णिमा धुमाड़े।

अभी आपने सुना पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग मारू बिहा। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे माधो मुड़, हारमोनियम पर थे सुयोग कुंडलकर। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के है मोरी सुधलिनी और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रे बनरा प्यारा। साथ संगत तबला शंकर कुंभर, हारमोनियम चैतन्य। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण।

श्रोताओ अभी आपने सुना पूर्णिमा धुमाळे द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभर, हारमोनियम पर थे चैतन्य कुंटे। ये आकाशवाणी भी केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन राग रागेश्री. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सोहनलाल शर्मा. राग रागेश्री में ख्याल, कलाकार पंडित जगदीश प्रसाद.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ ख्याल इन राग रागेश्री. आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग पंडित जगदीश प्रसाद. Accompanying on the tabla, Raghunath Nandi, and on the harmonium, Sohan Lal Sharma. Now, listen to Khayal in Rag Rageshri by Pandit Jagdish Prasad.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित जगदीश प्रसाद। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सोहनलाल शर्मा।
1: यू आर लिसनिंग टू ख्याल इन राग रागेश्री बाय पंडित जगदीश प्रसाद, एकम्पानिंग ऑन द तबला रघुनाथ नंदी एंड ऑन द हारमोनियम सोहनलाल शर्मा।
0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए सुनते हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य का सरोद वादन राग कौशिक कानड़ा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित परिमल चक्रवर्ती। सरोद पर राग कौशिक कानड़ा, कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we present our Hindustani instrument.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग कौशिक कानड़ा में सरोद वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित परिमल चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a sarod recital in Rag Kaushik Kanara by Pandit Devashish Bhattacharya. Accompanying on the tabla, Pandit Parimal Chakravarti. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7, anytime Indian music.

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुली से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुली। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गांगुली आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार है। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुली इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुली जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुतबंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू 3 ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन 3 ताल।

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार थे पंडित गिरिराज। ये है रागम डीटीएच पर हर दम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें होंगी तीन ताल में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to Hindustani Sitar Recital by Pandit Giriraj. This is Ragam, 24/7 DTH, anytime, Indian music. Continuing the concert, now the artist renders Rag Rageshree.

ये था राग रागेश्री। अभी सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतनिया। हर दम हर समय डीटीएच रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द अकंपनिंग आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार है सुरेंद्र शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गाओ. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दद्दू खां, सारंगी पर समत खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी. दिस रेंडेशन कमेंस विद अ राग सावनी नट. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झनन झन झनन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी, यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी। संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं लाल मनाए और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition in Rut Khayal set to Teen Tal. The lyrics of this composition are Allah Jane, Allah Jane.

0: सिंह का गाया राग भी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल टाइटल, श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल, इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दिया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहैया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगत की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहैया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयश्री कुलकर्णी के स्वर में सत चोखा मेला की भक्ति रचना।

जय श्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेला की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं दीपक पाटेकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी दीपक पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत भानुदास की भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं बाल माई।

संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे पाल माली। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना सौमिक शाह के स्वर में।

सौमिक शाह के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास ने रची ये हिंदी भक्ति रचना।